0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो पियम चुनकेरे वेर क्वारो
0: पियम चुनकेरे वेर क्वारो
1: बिमार मैं पाचो
0: बिमार मैं पाचो
2: युवान लंग यू बिरु टेला आ युरो का कालू पेने
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो
2: Anaye, Pineapple New Five, Anaye, MC Wangja.